एक है हरी हरी, ये ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी, ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

0: सूर्य की कृपा। फिर मारो ने ताना मारो
1: ये ओह जो दे ये पूरे दे ते जाओ गाना हो तो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी आप उच्चारण कर लेना आपको सतनाम
2: पूरा कर।

एक सपना है। हजूर बाणी विच भी बख्शिश करदे हन, सुपने सेती चित मूर्ख लाया। ओए मूर्खा, कदी सुपने भी सच्चे होए हन? सोच ए संसार भी सुपना है। जितने तियां पुत्र धन दौलत महल माड़ियां, जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। इसलिए ए सुपना है। सुपने नाल चित लाउन वाला मनुख कदे तोड़ नहीं अपड़े। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हन कि श्वासा नू सिमरन दी माला बना। श्वास श्वास हर नाम जप, बिरथा श्वास मत खो। क्या जाने ए अंतकाल ए श्वास मत हो। किसे नू की पता है कि जेड़ा श्वास मैं जप रहा सतनाम श्री वाहे गुरु, इस तो अगला श्वास आना है कि नहीं आना, इसका किनू पता है। इसलिए हजूर बख्शिश कर देखन भाई, सास ग्रास बंदगी कर, श्वासा का कोई पता नहीं। एक बुजुर्ग बाबा शरीर छड़न लगा, सारा परिवार आके बेनती करन लगा, बाबा जांदियां जांदियां कोई चंगी सुमत

इतना रोगी नहीं होता जिन्ना कि बहुता खाण वाला रोगी होता है। भुखे घट मरते ने, बहुते खाण वाले ज्यादा मरते। ए रसना सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने, ए रसना तू अन रस राच रही। अन रस कहते ने होर रस, होर रसा विच ते पै गई, ए भी खा लवा ओ भी खा लवा। किसी की निंदा चुगली की, किसी नु माड़ा कहा, किसी नु गालां कढ़िया, माड़ी गल करके किसी का घर बर्बाद कर दिता, ए काम ते तू कीता। पर ए रसना तू प्रभु का सिमरन नहीं किया। खाण दे भी रस हैं, झूठ बोलना भी रस है, निंदा चुगली करनी भी रस है, ते सारे रस तू

उस वाहिगुरु का स्मरण नहीं करती। सतगुरु जी कहते ने इस रसना नू, इस जबान नू, तिल तिल करके कट

बार न समझाइए ऐ रसना जे गुरु महापुरुष ओ कहंदे ने अकाल पुरख शरीर दे जितने रोम ने इन्हां नूं जवाब

भी है पुन भी है, पर तू ये दस अंत वेले मेरी सहायता करेंगे। ते मां ने कहा बेटा मैं तेनु पालिया।

कि अंत वेले तू मेरी सहायता करी। सत्संग घरवाली ने भी यह गल कही, मेरे माता पिता ने तुहाडे लड़ लाया, तुहाडा फर्ज है मेरी पालना करनी, इथे दुख सुख विच मैं तुहाडे नाल हां, पर जद उस दरगाह विच लिखा होगा मैं तुहाडी सहायता नहीं कर सकता। भाई गुरदास जी की पौड़ी है, घर विच पुछन कल्लिया, अंत काल है होए आ सारा, घर विच महापुरशां ने भेजिया जा पुछ के आ, अंत वेले कोई

मरा मरा जपदिया जपदिया ऐसी मालक दी मेर होई बिरती लग गई मन जुड़ गया ए रसना जेड़ी मरा मरा कहती सी कृपा हुई मालक दी मरा मरा तू हुण राम राम हो गए समा बीते ओही आर्या समाज दे सत रिखी फिर उस पासे आए राम राम दी आवाज आ रही है इधर उधर देखिया बंदा कोई नजर नहीं आंदा एक मिट्टी दा ढेर है उत्ते कास उगे अपनी शक्ति नाल जाने इस ढेर दे थले बाल मीत बैठे मिट्टी हटाई स्वास दसवें द्वार चढ़े सन महापुरुषा ने अपनी शक्ति नाल स्वास

दो आलम कहंदे ने दो जहान तेगे तेगे क्या है तलवार नू किरपान नू नानक साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त फजले कहंदे ने मेहर किरपा इना दोना लाइना दा अर्थ ए सिक्का दोहा जहाना वास्ते है गुरु नानक देव जी दी तलवार नाल अति शहनशाह दे शहनशाह सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा ए सिक्का

चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार

अपने बच्चियां नू कुर्बान कर दिता, अपने प्यारे साथियां नू वारी वारी मौत दे मुंह च धकेल दिता, अपना धन दौलत संपत्ति सुख चैन जवानी सब कुछ इउं स्वाहा कर दिता जिवें कोई यज्ञ करन वाला किसे महान हवन कुंड विच आहुती ते आहुती देई जा रहा होवे। जिस दी महानता दा ए हाल सी कि ए सब कुछ कर दिया होया, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने मथे ते वट नहीं पाया, बुल्लां विचों हाय नहीं निकली, कदी अखां तों अथरू नहीं वगाए, कोई साधारण आदमी नहीं सन। उस साधारण आदमी भावे किन्ना भी देश भगत क्यों ना होवे, निस्संदेह अजिहा नहीं कर सकता जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। अजिही महानता केवल उन्हां महापुरुखां विच ही हुंदी है जिन्हां सैकड़े जन्म योग साधन बतीत कीते होण, अते फिर जिहड़ा महापुरुष शिखर ते पहुंच जांदा है ओह ही भविख नूं देख सकदा है, जिस नूं साधारण नजरां वाले नहीं वेख सकदे। इस करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हिंदुस्तान दे विच जगह जगह हुंदे हुए नादेड़ गोदावरी नदी के किनारे वाल जा

गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव दा जन्म जम्मू अते कश्मीर दी एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर दी एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी, जिथे लक्ष्मण देव दा जन्म होया। इना दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेड देया लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नू मार सुटिया, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदो हिरनी नू तीर मारिया हिरनी जड़ी सी मरी, ओदे पेट विच दो

सफाई सी, उचता से इस जागृत आत्मा ने गुरु महाराज जी नु वेखदे सार ही पहचान लिया। उस महापुरुख बारे भी इस माधोदास बैरागी ने सुनिया। वो महापुरुष गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां ने तिलक अते जंजू दी रखिया ले दिल्ली चांदनी चौक विखे अपना सिर दिता।

उसने सिर चुका दिता। अते इस तू बाद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्ना ने बड़े प्यार नाल माधो दास नूं देखे।

अमृत भरी मिठी प्यारी अति मुस्कुरांदी आवाज विच आखिया मैं गोविंद सिंह हां बैरागी ने फटिया फटिया अखां नाल उन्हां वल तकिया जिन्हां नूं

एक होर हिरनी भी है जिसनु कड़ी कड़ी शिकारी तीर मार देनी। ओ हिरनी है ए धरती साड़ी जन्म भूमि जिसनु जुल्मी अपने पैरों थले लताड़ दे पे ने जुल्म पे कर दे ने माधोदास बैरागी ने ए सुनिया होया सी।

अनेकां वस्तुआं दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जालमां दा नाश करन वास्ते नादेड़ तों गोदावरी दे कंढे तों

माता सती ने उन्हां नूं कहा शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारिआं नूं बुलाया है पर ना मैनूं बुलाया ना तुहानूं बुलाया, परंतु वो मेरे पिता दा घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा बिना बुलाए जाना नहीं चाहिदा, पर सती जी ना मने तां भगवान ने जाण दी इजाजत दित्ती। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलां विच पहुंचे जिथे यज्ञ हो रहा सी, तां दशक प्रजापति ने सती नूं कोई आदर ना दिता, सगा शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया तां दशक ने अगू सगा होर कहा, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नूं पता लगा तां उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरो वीरभद्र वगैरा पैदा होए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी तां भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर किया। तां उसे वक्त उन्होंने दशक प्रजापति का सिर वड के यज्ञ की अग्नि विच सुट दिता, हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग यूं नसन लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी हुई परलो आ गई होवे। इसे तरह यह कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने महाभैरो नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा किया अपने

एक ऐसा शहर सी जिदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचया अपनी

0: कृपा निधान जग गुरु
1: करुणालय है
0: अर्थालय है खल खंडन है मह मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है।
1: हे प्राणनाथ गोविंद
0: कृपा निधान जग गुरु हे संसार ताप हरणे करना में सब दुख हरो संयोग दयाले हे संयोग दयाले दीनानाथ मैं आ करो दीनानाथ मैं आ करो शरीर

ठंडे बाटे दी पहल नू छक लिया। उस सवा सवा लख दे नाल लड़न दे काबल हो गए, उस विच इतनी शक्ति भर गई।

भय करके अर्थात समुद्रन की मत कहो। काट वनस्पति सगरी लिख बहु के लेखन काज बने हो। सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपाण ना विनती काल कृपाण ना विनती ना तो तुमको सब नय कर हो। बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कूट पराद हमारे खंडो कूट पराद हमारे खंडो। अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी

तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखो हार प्याला।